0: सूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन,
0: अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन।
1: रेडियो स्टेशन
0: तो सुनते रहिए 88.4 करक।
2: दहर जण आवाज रेडियो अमन आवाज रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क मुंगरुस तासुला पारा दगशान मनमती परग्रमन चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासो सरयो रेडियो अमन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन।

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं।
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Sakib Achir, the Gerzira.

जी बिल्कुल, बैकग्राउंड के दगा खसा शांति संदरा यानी दे सरा सरा कना चावेले दा कंदी कुचे और दे सरा सरा बिल्कुल गयूर वजीर पा वज माने टेक्स्ट लाइक कना दा बखवे सरा एंजॉय को बैकग्राउंड की जी और मखबला डेरा खवासा दा शाम होते जे मजारो कवि जैसे करो सरा वोर वे जी।

ढेर बिसार दाई वहां जबरदस्त दादा जी सडे रो केना हुदा सुगी केना से पला केना दर बनो रो पला पला पला पला दर बनो रो पला दर सर और एक वंदिना मासे रा तका तका तका तका सरा घर मा बाकी मैसेज के साइडो कालो छ कि मिगना टाइम भी की खत्म नाई

रखे जोन में तेरे पे योर के वैसे सलाम अलैकुम ना सलाम अलैकुम हाउ आर यू और वेलकम टू द माइंड टाइम शो हर क्लाइप पर खैर अगले पर तक असर गरमा अबे चे पत्तों में बश के जार के मुफाद मुझे रिसाना देर जुता बना अब यही क्या ना सब यही सब यही सब यही ओए होए पहले रिफ्रेश कर दिया ना खैर दे पब जो आते मैसेज नंबर उसी क्या ना अबे चे इसमें लार लिजिमल फ्रॉम कर रखा अबे चे ये फोन नंबर मांदे सिग्नल है नष्टा चल नार्म नंबर मांदे नष्टा दी ओए होए मनोना शुक्रिया यो जहान मनोना देर जुता मना लार लिजिमल यो जहान मनोना अबे चे मैं जी आई मिस यू और मारी अरमान देर जुता मना मारी अरमान यो जहान मनोना मैसेज कौन है देर जुता मना अबे क्या ना जे इट्स मी लाड लिजिमल फ्रॉम करके मो कजन मंगनी तो नाइस सॉन्ग प्ले का आरता ओइश माल स्किन पलश लगाओ जोन तैयारो शुदे वोर वो डेर मजा कवि डेर जो तमन्ना बिल्कुल चिकन के ना आधा सुखी के ना ते देखा सन उरो दे दो का ना वागे दे परवाच बेला सुखी ना चिदा करा दिसर सा बन के वादे के चिकन के ना दे वोरो लाई वा संदरो दे ता प्ले के दे लो चिकन के ना मैसेज ता मैसेज नो छे वोरो वाला संदरा में दे ता प्ले के वे के ना Vrovala chikimigana, dasukigana che, urvala dasandaru chikana, sada sa rehan wazir velu, dasandara rusala urve. Acha damu kelche, dagayo sandara do, wadada gulale ni, sada sa sandara do kana, daru sarore padikshe, sa khabare ki sidhi.

0: हाय हाय, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने, जो सर मांगे तो हाजिर हो, जो जर मांगे तो बेजर हो,
1: जो सर मांगो तो
0: क्या इखलास है इसमें भाई।

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

नमस्कार आवा दिखा ले लारे मैसेज दे लारे जना बिल्कुल तड़ुन कही खोज लिसनर देर पुजड़ा पोरे हैदर आफरीदी तल दे तले रुजाना है ख्वाहिश वाला है वसीसा।

हाँ जी नोबेल कल जी दे बानी सिग्नले बान शवी हुए दे बानी नामे दे तार त्राप कड़ल वो कारक था कारक तारों कल ले कारक सिग्नले इधर ता बान कर ले दे नामे दे ता त्राप कड़ल वो पेश वार था वो सिद्धिलर पश बान रहे ना छेरे दिन आलोच आखिरी उसे पर पंजाब जोन खरसा हो बस बेखिये पे खरसा हो पपिंजरी पे खरसा हो पे खरसा हो ये लरे सड़ा दे सुबह ना मुदाल ले बा सरा जुड़ा कड़ी है दुकाना कला रोड बान कला सिग्नल बान कला मड़ई गुरु ना कला दुणा गुरु ना कला पेट्रोल गुरु ना दस दाकड़े दे पूरा खाली मिश्त से दा पश्तो ना नहीं पदा बंदे तजुर्बे की रिस दाकड़ा पे की तो मिश न पी जी कहना जी मिश दस ही कहना चाहिए सुनी ना मोड़न द कड़ी हदी कुण कड़ी मोहदी ब्याज कला डेर बाद रोजाना वज नो सो की बस दे अल्लाह ताला ना वो दे खैर दाऊ की चाल बटे दाऊ वटे तस्पे वो फली का ना से द्वे द्वे वाड़ा ही जुनता वहाँ दाऊ की बलता वहाँ दाऊ की पदाश है मुख्य अरे कने पचार को दास वहाँ चेरे मुसा दा कई पशे कड़ी हुआ है चेरे मुदास कड़ी हुआ चाला पर आजो बंचेरे गरीबों ने तपाई सेवेर कड़ी हुआ है चेरे मुदाई अति मुन कतली हुआ है पलुसी ना वही सारी ना वेर तेर कड़ी है रास लूस पे वेर तेर हुआ है चेरे मुदा से नूर दा से जरूरतमान खालक कतली हुआ है चिदे आगे दे माड़े दा राक ना लगी जी आगे तमो माड़े ही वेर कड़ी हुआ है हाँ ना ना ना वो चे मेरो दा रोडीना नवी बन कड़ी है ना दा मिर्च दास नहीं या थानी ना मुने भी कड़ी दास है मिर्च ना

हाँ जी मिलता हूँ हद से सदफ सलोमो की मेहताब दे सलोमिना वंट की इंशाल्लाह का दे खैर वो जे बेउदा से बानी तरफ था पे वो जी नवरंग तरफ था का ना खुदल तक यू आउज दर बंद उर वो अजका शे डेरा ताबा मेरता शवी दो जब यहाँ जे तुसे वो खताबा शवी बीच माने शाहिद खान और बिया तशावीर प्ले का भी हो युवा खबर अदा देर तक हम चे खुजिफा कंपनी शिफा ची सुमरा प्रोडक्ट दी या तुसे यकीन मने हकीकतन मुझे गप डेर दाए मुझे मजलस डेर दाए मुझे खानदू डेरा दो मुझे जड़ो हाँ डेरा दो भला का हकीकत मजलस दादा है छी दे शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टूल प्रोडक्ट सुमरा प्रोडक्ट दीजिए दा पई वो पो बल तेर दी फायदा पक्षे डेरा दो हकीकतन फायदा दो पक्षे छी दे किम मकसद दे पूरा किम शाये हाँ ओ खले इनशाला चाहगा तो ना उम्मीद है कभी ना तो जरूरी है ट्राई के जरूरी है इस्तेमाल के दे खुजिफा कंपनी प्रोडक्ट फायदा उस सल्फ इस अदर था मिला विजय इच्छा आता है हाँ वो सपरा जो कीमा दो मिश्तदान दी विली चियारा जे स्पिन नकड़ल या दे मुद्दे सार वेस्टोन ठीक नश्वल या में दर्दी ना उरक नश्वल या में जो कीमा दो शैम्पू दा से मजे दूरे ने ना ना ना ची चा से इस्तेमाल करी हाँ दे ख्वाश थी ब्याह इस्तेमाल भी ब्याह उखली खो अगर खलक के फर्स्ट टाइम दा प्रोग्राम उर्वी नो दुई दे हाँ यूजली जरूर ट्राई की और दे बेहतरीन प्रोडक्ट ना दे फायदा उखली।

बिल्कुल डुमेल तरफ तो लुट सदफ कॉस्मेटिक्स डुमेल, मेहताब कॉस्मेटिक्स डुमेल, हनीफ कॉस्मेटिक्स डुमेल, हामिद आमिर बेकरी अजीम कलाई रोड डुमेल, हाफिज आमिर बेकरी लिंक रोड, रजाशाह कॉस्मेटिक्स लिंक रोड टाउन।

नवरंग से फ्रेश वे बेकरी, नवरंग अजम शॉपिंग सेंटर, नवरंग शेरे पंजाब बेकरी, नवरंग लुकमान जनरल स्टोर मनियारी गली, नवरंग जहांगीर मनियारी गली, नवरंग हाजी अहमद शाह मनियारी गली, नवरंग दिलता दे शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ट्रोल प्रोडक्ट देता मिला वीजी चिक्कू।

खुश खबरी, खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तेल पिशावर, बन्नू, लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाओ थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तेल चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओस ओस गंजे शवी भी याद सर वेख्तान गुरजीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पफल सरबा ने मालश की नो ददा बसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुरजवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवी दे सर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवलेशे 0331 397 3636।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

0: Sí.
1: Ya, jato para.
0: Y allí para ahí no va.
1: Sí, ya
0: no, ya se de bala para ver mucho va.
1: Sí.
0: Acha, acha, acha. Yo bilkul da shevika se gana. No, khaji. No, da para que se gana. Acha, acha, acha, da para todo. अच्छा जी शादा पटा दो
1: एदा पटा दो
0: नो दा चादा चाता अच्छा पटा बिल्कुल और वगैरह ना वगैरह मखी दा खबर क्यों परो नु इदा से बाबा रोगले हो गया ना
1: हां
0: नो ज हेरो नो वरता नो ज रोगे दर दा ना बाबा माशाल्लाह जी जबरदस्त ओ फौज ने रिटायर हो गया ना ठीक सो नो अच्छा जी मोजे दा वाज वेल स्लो दा हां नो बाबा रोगले हो नो गप से भी लगो गया ना वही कहना चाहिए तो देखिए हम जाएगा ना
1: हाँ
0: वही लिखे मतलब लगता सब कभी क्या ना मौत है चेहरा मरना दल तक ही मौजे बस रुवाला है बस न कहो सके ना वही चेहरा रुवाल होने हाँ मौत है चेना ना
1: हाँ
0: बाबा दस हैरान शो वही लिखे शाह ना वही लिखे दल तक इस तरह के रुवाला है क्या ना मौजे बस बस दल की गुरा बस चले गए
1: थे
0: मौजे बस घर जी गया ना दस गया ना नो बस बिया गप शपी वाला गया होगा ना ठीक सा खो बस बिल की मुकावा ना सही था नो अदाय हाँ हैरान होगा ना लगा माशल तेरे खुशी खबर होगी दुआ गाने हैं कबले नोवेली चीज़ तो टूल प्रोग्राम ही ना वो रो
1: नो अगर
0: नो अलसना रो बिल्कुल नो बाबा नो खोर ना ये शो ठीक सो नो आगे हाँ डेरा मन्ना
1: बाबा का प्रोग्राम वो भी अलग है खुश होला सोती
0: आ
1: सही देता बिल्कुल दागसार ना क्या कहना शा और सुमरा खान ने रिजवान दीजिए चा चा माशल वो दोनों शिवी नो ये बबी गाने जी सुमरा दी कहना आगो तो मुबारक की वेर का सही ना ओके जी पठावे
0: सही
1: और न्यू करो तो टोलो तक मतलब

0: खजी हजुर बिहारकेले ठुलो मिना वालो त खजा भने बटा म गरेला
1: बिल्कुल
0: अब बिल्कुल कसी बसे के ना अच्छा जी दा शमिलाओं में अगेन मिस रोशनी राजलला मिस्टर हान ने तो मेरे मैसेज का बेड़ा गर कर दिया है ना बिल्कुल शामिल में भी अच्छा
1: शामिल छो ना
0: बिल्कुल मैसेज शामिल छो मुझे सिराई की बहुत पसंद है मैंने ये मैसेज सिराई की लैंग्वेज में की थी
1: अच्छा अच्छा मैसेज खबर आई
0: के ना और प्लीज सिराई की जुबान में बातें करो ना थोड़ी देर के लिए जिंदगी तो जीना है मन था चेक का सलाम तारिक सर एंड राज भाई कैसे हो उम्मीद कर रही हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सो वेरी नाइस प्रोग्राम असे वैसे राज सर मोता द डियर डियर मुबारक वी सिग्नल राग ले ऑल द बेस्ट
1: जी
0: अच्छा जी सिग्नल तो उस तरफ थे रोवली भी खुद दल तक या फिलहाल नश्ता
1: मुझ तरह सिंगल है नश्ता ऐसा
0: सिंगल है नश्ता
1: ये अक्सर भी आए क्या ना यो कास वो अगर नमो सिग्नल तब पहुंच के बेचने मिश पहले सिंगल है नश्ता ऐसा मुझे चाहिए वो या जी सिंगल
0: ओके ना दास दे नो सिंगल है यदल तक नश्ता शाह दल तक बिल्कुल बंद ही
1: दल तक चाहिए दी
0: अच्छा जी बिल्कुल दाचे दे नो सिग्नल
1: से वो क्रिकेट दुम रहे फास्ट शो है ना सिंगल खत्म चकी दी चोरी
0: चकी चोकी चोकी